0: चल गए रहा
1: क्या बोले
0: चल गए चल गए चल गए
2: बेटा मासा satu rasa sukun spesial baru.